0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत

0: जीएम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: कार्यक्रम प्रथम कंठशिल्पी शुद्धा मिश्रा कंठरे पुरातन गीत रचना है।

0: सह आरभ्यते अस्याम वार्षिक रथ यात्रायाम जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति फीफा विश्व चषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत् जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम स्पेन दलम सम्मुखी करिष्यति भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः
1: संस्कृतरे संवाद रिलेकरे प्रचार कुलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना शुणु सकाल 7:25 प्रचार करू जगन्नाथ भजन कार्यक्रम सकाल 7:30 पुरी ठारे अनुष्ठित होगा पवित्र घोष यात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी आमर द्वितीय अधिवेशन संध्या 6 प्रचार करिबो केतोटी भक्ति गीत सुगम संगीत शुणीपारे संध्या 6:15 संध्या 6:30 शुणीपारे विकास मंत्र कार्यक्रम आदिवासी संगीत कार्यक्रम प्रचार करिबो राति 7:00 राति 7:30 शुणीबे चाषी भाई मानक कार्यक्रम चाषबास आपणक अनुरोध रे हिंदी कथाचित्र गीत प्रचार करिबो राति 8:00 राति 8:30 शुणीपारे श्रोता बंधु मानक चिठी पत्र उत्तर कार्यक्रम स्वामी पेशो गीत अतीत संगीत को नहीं आमर यह विशेष कार्यक्रम आपने शुणीपारे राति 8:40 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रचार करिबो राति 9:30 राति 10:00 प्रचार करिबो गीतनाट्य श्रीगुंडीचा रचना एवं प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक संगीत भुवनेश्वर मिश्र श्रोता बंधु हेतिला आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना आकाशवाणी बारिपदा आमर परवर्त कार्यक्रम रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्र किण मतरे

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पापहर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथयात्रार धारा बरणी शुणापी आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मान पुणि थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बर्षकर बहु प्रतीक्षित मुहूर्त एवं उपगत हो सबुआड़े उत्कंठा उन्मादना एवं उत्साह भूमि भूमा पर्यंत समस्ते चलचंचल एक अपूर्व उत्सुकता और भक्तिक आवेगर समस्त दृष्टि निबद्ध नीलकंदर उपरे भक्त दर्शन करिवे महाप्रभु को, महाप्रभु दर्शन करिवे भक्त को। आबाल वृद्ध वनिता आज जे भी महाप्रभु दिव्य लीला दर्शन करने बड़ दंड उपस्थित होती समस्त असामान्य श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव विभोर चलार रहीबार ठेला पेला सहबार पाद छिंडी जीवार वर्षे तिंतार समस्त कष्ट आज तुच्छ हो जा जीवन रे परम प्राप्तिर बेल जत आगत से कौ कष्ट अटकेब भक्त को श्रीक्षेत्र तो स्वाभाविक भाव प्रबल भक्तिमय परिवेश थाए ता सांग को सचराचर विश्व आज भक्तिमय समस्ते जपरी महाप्रभु को धारण करने निज हृदय सिंहासन को सजाइबार लगी महाप्रभु पाखे आम प्रार्थना से विराजतु प्रत्येक हृदय सिंहासन आउ अल्प समय व्यवधान प्रतीक्षार फल मीठा श्रोता बंधु आम समस्ते से स्वाद पाइबा जानते श्रोता बंधु विगत 452 वर्षर इतिहास रे विभिन्न कारण 32 थर महाप्रभु रथयात्रा हो पारिना किंतु 1736 मसीहा परठारु ए पर्यंत ए यात्रा निरवच्छिन्न भाव चली ओडियांक भाग्य केते टाण एवं महाप्रभुंकर केते करुणा देखंतु विश्विक महामारी कोरोनार कोकुआ भय काल रे भी महाप्रभु रथयात्रा करैले।

0: ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଲକିତ କରୁଛି, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଠୁଳିଭୂତ ହେଇଛି, ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇଛି। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସୁସଜ୍ଜିତ, ତିନି ରଥ ବିଜେ ଖଳାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ରଥପଥ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି କରାଉଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ କହି, ଯେଉଁ ମୂଷଳଧାରାରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବୁଥରୁ କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ, ତାହିଁ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, କାରଣ ସିଏ ପରା ଏ ମର୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, କଥା କୁହା ଠାକୁର। ସେ ପରା କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଭାବ ଡୋରିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଠାକୁର କଳିଯୁଗରେ କେତେ ମହାନ।
1: ଶୁଣୁଥିଲି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପରେ ପରେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
2: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
5: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
4: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
6: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट

0: पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
3: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते।

0: राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु उनका प्रसाद महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत 300 से ज्यादा घायल अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कटक शंखक्षेत्र पुरीठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध पवित्र घोष यात्रार धारा बरणीर सीधा प्रसारण शुणे श्रीक्षेत्र
3: बड़ सुंदर भाव से दृष्टिपथारूढ़ जहाँ जहाँ हूँ आप संपर्क श्रोता मान सूचना दूसरे आज रथजात्रा कथा आलोचना करुचु से गोटे गीत मोर मन पड़ी से गीत होची ताकू मध्ये भिकारी बल गाई एवं आमर डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय ए कथाटी उठेले जेतेबेले दुईटी जगह को आमे देखुचु गोटे होची रोसघर ऊपर रो छात आ गोटे होची ए जो आपण को सिंह भेट मंडप सिंहद्वार रो दक्षिण पार्श्व रे जो मंडपटी अच्छी से नीलाद्री विजय दिन जो भेट मंडप से मंडप ऊपर बहु पारा सेठी उपस्थित अच्छा एवं नरेश बाबू कहते जे समग्र विश्व जो लोक मैंने आसी देखापी आम हाँ आम श्रीक्षेत्र देखुले मूत बड़ देवर पारे से जो बड़देर पारा है कि सब बड़े बड़देवल उड़ूले आज बड़दाण्ड में दृश्य देखापी से पारा मान आप आश्चर्य हे आप तो देखिपार आमर शाब्दिक मध्यम कि आपतु पारा गुड़िक श्रृंखलित होकर बसिच कह कथा ना मान सते एकम्र काम बड़दाण्ड को तीन टा रथ को सी चाहकर बसिच हाँ मेली से सब बस सुंदर लगुच एक देखिले जे पारा मान भितर कि प्रकार श्रृंखला ज्ञान प्रभु भर्ती कर जोटा आम मानक भी शिखबार अच्छी तेणु ये जो आ गोटे कथा आप देखु आपणकर यहाँ कौन कह आपणकर कर्ण चक्षुरे आप देखिए जे आपण मैंने जो मैंने आ भितर आसी पुरी को आप देखिथे जो मैंने न आसी जानतु जे एवं सिंहद्वार जो दरजा था सिंहद्वार जो कबाट था सिंहद्वार से सिंहद्वार कबाट गुड़िक बर्तमान रूपा छाउणी हो जा बहुत सुंदर देखा जामें बसीचु राधावल्लभ मठ उपर ठीक तार सामने अरुण स्तंभ आगे जो फुलर मंडणी होती सिंहद्वार सिंहदरजा बंद अच्छी केवल से जो जला कबाटी खोला अच्छी रूपारे छाउणी होती सिंहद्वार दरजा किसी समय पूर्व आम देखुल जे ये जो घंटुआ सेवक मैने अरुण स्तंभ पाखे समस्त समवेत होते ये 5-10 मिनिट आगु से सब मंदिर भितर को प्रवेश कले से जमापड़ी जो महाप्रभुं पहंडी प्रस्तुति आरंभ है ना घंटुआ मैंने कहीं जाते से घंट बादन कर महाप्रभु को आणवे तेणु से घंटुआ मान मंदिर प्रवेश घटी सारा आउ आपण जानती जे महाप्रभुंकर महिमा एवं श्रीक्षेत्र महिमा ये सब संपर्क जदि आम जानवर इच्छा थाए बा से संपर्क गोटे प्रामाणिक ग्रंथ हूँ स्कंद पुराण उत्कलखंड पुरुषोत्तम महात्म्य तेणु से पुरुषोत्तम महात्म्य निजे इंद्रद्युम्न महाराजा को महाप्रभु जो प्रकार

0: बाधा कौनसी बाधा नथिब जेतेबेले देखिबे तांकर प्राणप्रिय ठाकुरंकु आखि पुराई एक समय रे नथिब भितर काठ नथिब बाहर काठ एवं एक समय रे लक्ष लक्ष जनता आउ पुणी आपण माने जो श्रोता बंधु अछंती गुणग्राही जगन्नाथ प्रेमी समस्ते एक समय रे महाप्रभुंकर दर्शनर स्पर्श पाउछंती ये होउछि बड़दांड को आसीबार अभिप्राय महाप्रभुंकर महाप्रभुंकर जो इच्छा ताहा होउछि तीनोटी लीला महाप्रभु रचना करुछंती ऐश्वर्य लीला माधुर्य लीला औदार्य लीला वर्तमान बड़दांड को ओल्ही आसी से प्रमाणित करिवे तुम्हें मोर मु तुमर आम को कहीं अलग करे ना आपण माने जानती से वचन देते राजा इंद्रदुम्न को सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव ब्रवीमिते प्रसाद भंगे तत्स्थानम न त्यक्ष्यामि कदाचन तेणु हे राजा इंद्रदुम्न मु श्रीवत्स खंडशाल के छाड़ी ना जदि छाड़ी ना आज महाप्रभु आपण किपर आसुंच तेणु यही आसुंच जगेई दे आसिछंती माधवंकु हे माधव तुम्हें मोर प्रतीक भावरे तुम्हें मोर प्रतिनिधि भावरे ये श्रीवत्स खंडशाल रहिब मु पूरा सत्य करिछि मु जदि सत्य को पालन न करी ये जगत रे सत्यर गुणग्राही केई हेबे नाही तेणु महाप्रभु माधवंकु रखी से वर्तमान आसी जाउछंती बाहर को
1: ये मुदिटी भलो लागुची पत्नी को पसंद आसीबो
2: हां सर आपनक चॉइस बहुत भलो अछि आ ए डिजाइन भी नुवा
1: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण केउठी मिलिबो
2: सचेतन ग्राहक होवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
3: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्रीमानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
4: ओडिशा रा प्रगति पथर जोड़ी हेउछि विकासर नुवा अध्याय दूरता कमाई गां को गां सह जोड़ुछि सेतु बंधन छात्र छात्रिंक पई प्रतिबंधक साजुनी बढ़िला नई जातायत हेउछि सुगम सुगम ग्राम्य सड़क रे एबे दुआरे पहुंचुछि आंबुलांस गां को बाजार सह जोड़ुछि प्रशस्त सड़क चासीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबु पई खोलुछि नुवा सुजोग पर्यटन स्थली को सुगम करुछि सड़क संजोग बढ़ुछि पर्यटकंक आगमन गां गां रे लंबिछि उन्नत सड़क दृढ़ हेउछि विकासर भित्तिभूमि समृद्ध हेउछि ग्रामीण ओडिशा सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक मार्गदर्शन रे ओडिशार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग
5: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रोता बंधु पुणि प्रथम केन्द्र रु आम आपको धारा बरणी देवा आरंभ करुचु वर्तमान तीन रथरे जो कलश ध्वज बंधा कार्य चली कोठस्वासिया सेवक मैंने आम आखि आगे तीन रथ उपरे चढ़ी वर्तमान कलश स्थापना करुंचं कलश स्थापना सहित तीन रथ उपरे से कलश उपरे महाप्रभुंकर प्रदत्त आज्ञामाल बांधुंट आमे बसिकी ये कथबार्ता हो देखला बेलू आमर आखि लिभि जाऊँगी जे कि भाव में कोठस्वासिया सेवक मैंने कौ बाटे रथ तो मंडनी हो जाती रथ उपरे तो सबु रथ उपरे तो कना छाउणी हो जाए कौ बाटे मैंने उपरकू गले प्रकृत में ये जो रथ निर्माण कौशल आपड़ देखिए रथ कलारू जो रथ निर्माण आरंभ हुए ये बड़े विचित्र आमर प्राचीन शास्त्र मैंने ये समृद्ध एवं एत निखुण जे रथ को निर्माण करते जो कारीगर माने जो शिल्पीकूल ओडिशार से शिल्पीकूल को धन्य कह से शास्त्र से परंपरा को यंत मन रखी ताको पुंखानुपुंख भाव अध्ययन करी ए पर्यंत ताको प्रयोग करी जो रथ निर्माण करुचंती ନିଖୁଣ ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ରଥ ଭିତର ବାଟେ ଉପର କନା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥିବା ତା ଉପରେ ତ କୋଟସିଆ ସେମାନେ ଚଢ଼ିପାରିବେନି, ସେମାନେ ରଥ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କଳସ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ରଥର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व। से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो। जेमिति तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोलें बिक्री होउथुबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होउथुबा खाद्य, माछि बसुथुबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदौ खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हात को साबुन ने भल भाव धुअंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रुहंतु। अळिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पकई डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पाई पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221275 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारीको शक्ति विकसित भारतरे समृद्ध ओडिशापाई महिला सशक्तिकरणको केन्द्र ओ राज्य सरकारको विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरणर जुगान्तकारी योजना सुभद्रारे महिलाको मिलिछ आर्थिक सहायता। मुख्यमन्त्री कन्या विवाह योजना, एकीकृत ममता ओ प्रधानमन्त्री मातृवन्दना योजनारे योग्य हिताधिकारीको सहायता। असुविधारे थिबा महिलाको तुरन्त सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नम्बर 1811, असहाय महिलाको पाई शक्ति सदन, वन स्टप सेन्टर, पोषण अभियान, मुख्यमन्त्री सम्पूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यमरे गर्भवती, किशोरी, प्रसूति ओ शिशुको स्वास्थ्यको दियाजाउछि प्राधान्य। प्रारम्भिक शैशव जत्न ओ शिक्षा, आमे पढिबा आम भाषारे बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, अद्युका इत्यादि जरियारे महिला ओ शिशुको सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला ओ शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, महाप्रभु पुणी आउथरे समस्तक छत्ता को फुटे दैछन्ते। आ भितरे वर्षा बंद हो जाइतिला, किंतु वर्तमान वर्षा टिके टिके टिके टिके पुणी पड़िबा आरंभ करिछि, किंतु सकाळर वर्षा एबे नाही। वर्षा जदि होउछि आकु मुसलधार वर्षा त आमे कहि पारिबु नै, किंतु वर्षा होउछि। जो दर्शनार्थी माने बडदाण्डर समवेत हेइछन्ति समस्ते वर्तमान पुणी छत्ता फुटेकी रखिछन्ति निज मस्तक उपरे। सुदर्शन महाप्रभुंकर पहंडी सरी जाइछि, माँ सुभद्रांक रथ उपरे से आरूढ़ होइछन्ति। किछि समय पूर्वरु सुदर्शनक संपर्क रे कहुथिले आमर डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदया, डॉक्टर हरिहर।

0: रक्षा करुछन्ती तांकर से छत्र छायारे अनंत शयन से जगन्नाथंकर श्रवणर शक्ति आज मध्य आरती जेतबेले दुख को हरण करिबा पई चाहुछन्ती सेतिबेले कह कहउछन्ती थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा गरुड़ पछरे थाई बड़ भाई बलभद्र को कहिबा रे मन जदि तोर किछि कहिबार अछि जदि तोर किछि मागिबार अछि भक्त सहित भगवान कर जो संजोग पई तुमे जदि किछि भी मागिबार अछि तेबे तुमे कोन करिवो थका मन चले जीवा चका नयन देखिबा गरुड़ पछरे थाई बड़ भाई बलिया को कहिबा ये होछि सही भक्तर भावना बलभद्र हेउछन्ती जगन्नाथंकर श्रवण शक्ति आ जगन्नाथंक जहां पहुंचेबा पई हेले आमे बड़ भाईंकर कानरे कहिबा शिवंक पाइबा को हेले जेंती आमे वृषभ को छुई दे थाउ ठीक सही परि भावरे आमे गरुड़ पछरे थाई बड़ भाई बलिया को कहिबा बलभद्र सुभद्रा को पाखरे नै पहुंचेबे आमर मनर भावना जो भावना सुभद्रा हेउछन्ती ब्रह्ममय इच्छा स्वरूपिणी से इच्छा कले समस्त कार्य संपादन हेबो एवं ब्रह्ममय जतबे इच्छा करिवे से कंपन रु तांकर हृदय रो भावना जाई पहुंचिबो जगन्नाथंकर कर्णर सेई श्रवण बा गुहरे एवं से श्रवण शक्ति बड़ भाई बलभद्र सुनिला परे जतबे जगन्नाथक कानरे पहुंचे देबे तहा आसिबो एवं नेबे जहा देबे कि जगन्नाथ देबे करिबा पई कार्य करिबा पई निर्देश सुदर्शन महाप्रभु जो कार्य टिके समय पूर्वरु करूथिले सुदर्शन महाप्रभु आसुथिले चारिपट निरीक्षण करूथिले आजिर यात्रा रो कोनोसी बाधा विघ्न होइ नाही तो मो प्रभु यात्रा करिबे मोर जे आराध्य यात्रा करिबे तांकर जेमति यात्रा रे कोनोसी भी व्याघात न आसु ताहा निरीक्षण करूथिले तेबे चालंतु से महाप्रभु बलियार भुज जगन्नाथ महाप्रभु तांकरे अनंत लीला हरि अनंत हरि कथा अनंत ताकु श्रवण करिबा मो निकटरे अछंती आमर उद्घोषक जे के डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: दुर्भ्याम शोभित लांगलम समुसलम कादंबरी चंचलं रत्नाढ्यं वरकुंडलं भुजबले राक्रांत भूमंडलं वज्राभामल चारु गंड जुगलं नागेन्द्र चूड़ोज्वलं संग्रामे चपलं शशांक धवलं श्री काम पालं भजे। श्री सुदर्शन महाप्रभुंकर पहंडी परे सेना पटा भिड़ा त्रिपुर विजयी जुरद्रु बेसरे पाट रज्जुर आकर्षण रे घंट घंटा काहाली रो गुरु गंभीर ध्वनि मध्यरे संचालित चामर सेवारे चंदन कर्पूर अगुरु वर्षण मध्यरे धीर मंथर गतिरे पहंडी विजय करुछंती कामपाल बड़ ठाकुर श्री श्री बलभद्र भगवान से अच्युताग्रज से बलदेव से बलराम से प्रलम्बघ्न तालांक मुसली हली रेवती रमण राम कामपाल कलायुध नीलांबर रोहिणेय संकर्षण शीर पाणी कालंदी भेदन अटंती एहिपरि तांकर अनेक नाम श्रीमद भागवत रे तांकर रमणीय वर्णना देखिबा को मिले बलदेवं दिवाहुंच शंख कुंदेन्दु सन्निभं बामे हलायुध धरं मुसलम दक्षिणे करे तेणु से दक्षिण हस्तरे मुसल धारण करिछंती बाम हस्तरे फल धारण करिछंती श्री बलभद्र भगवानकर सी होछंती ज्येष्ठ भ्राता वर्तमान विजय करुछंती रथ यात्रा रे आउ अल्प समय परे से रथ पाखरे पहुँचिबे वर्तमान आमे देखि पारुचु अरुण स्तंभ मझिरेटी अछंती एपटरे रथ अछंती सेपटरे सिंहद्वार गुमुट या भितरे लोकारण्य एवं समस्ते सेवा प्रदान करुछंती महाप्रभुंकर सेवा प्रदान करिबा पाई।

0: ये मूर्ति भल लगुच पत्नी को पसंद आसब।
1: हाँ सर आपण चॉइस बहुत भल अच्छी डिजाइन भी नुआ
0: डिजाइन नुआ अच्छी ठीक अच्छी किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कौठी मिलिबो।
1: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु BIS केयर ऐप। सुना किनिबा पूर्वरु BIS केयर ऐप रु HUID कोड निश्चय जांच करंतु।
2: डाकघर माध्यम रे कमर्शियल एक्सपोर्ट पई स्वतंत्र भाबे बछा जाइथिबा डाकघर होउछि डाकघर रप्तानी केन्द्र बा DNK। वर्तमान ओडिसा रो प्रत्येक जिला रे समुदाय 35 डाकघर रप्तानी केन्द्र उपलब्ध अछि।
3: कस्टम डॉक्यूमेंटेशन करिबा आमदानी रप्तानी कोड ISC जेनरेट करिबा एवं रप्तानी डाक बिल पूरण करिबा स्थानीय उत्पादक क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग MSME को सहायता डेडिकेटेड काउंटर्स एवं प्रोसेसिंग एरिया ए सब को ठीक भाबरे नियंत्रण करिबा पई डाकघर रप्तानी केन्द्र को आसंतु।
2: समस्त डाकघर रप्तानी केन्द्र रे पार्सल पैकिंग यूनिट गुड़ी कर प्रोविजन अछि जेउथरे पैकेज फैसिलिटी मध्य उपलब्ध।
3: खाली सेति कि नहि एक्जिटिंग बल्क कस्टमर्स का पाई प्रोविजन अनुसार टिकस फैसिलिटी प्रदान करा जाउछि।
2: डाको घरर रप्तानी केन्द्र DNK एबे आपणक सेवारे।
4: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि।
5: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10,000 टंका परिवर्ते 12,000 टंका प्रदान करबा पई सरकार घोषणा करिछंती। एही अर्थराशि कु हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टिर उन्नति निमन्ते विनियोग करिथांती। सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जाइछि।
4: एही योजना अधीनरे मिलुथबा सुविधा गुडीक हेउछि कन्या संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12,000 टंका पाइबे।
5: पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 10,000 टंका पाइबे।
4: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पई कन्या संतान क्षेत्र रे 12,000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जाइछि।
5: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पई आपनक निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोगाजोग करंतु।
4: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभागर वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
6: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जाइछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्रीमानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जाइछि। पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे।
7: आगे बीजे काम पाल महामंगल सकाल दईतापति संकुल घेनी पाखरे केहू माने चरण रे केहू श्रीभुज बल रे के डोर धरिया गरे अतिशय रे विजय करांति हलिंकु धीरे धीरे नहीं जानती ताल ध्वज को। वर्तमान आम देखिपु आउम्र जो तालध्वज रथर सिंहासन रे महाप्रभु श्री बलियार भुज बड़ ठाकुर बलभद्र भगवान विजय करिवे से आउ अल्प मात्र आउ विचारि हाते मात्र रही किंतु एपटे आम देखुचे जगत जननी करुणामयी घट घट बासिनी उद्भव स्थिति संहार कारिणी परम कल्याणमयी परम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ माँ माँ सुभद्रा वर्तमान विजय करुछंती एवं से जो तांकर प्रिय दईता सेवक मानकर स्कंधावलंबन पूर्वक से धीरे धीरे धीरे धीरे पहंडीरे आगे आगे जाउछंती जेमिति बलभद्र एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभुकर पहंडी हुए पाउंड परे पाउंड पकाई आसंती तांकर पहंडी से भले हुए नाही से होउछंती जगतर माता से होउछंती जगत जननी करुणामयी समस्तंकु कृपा दृष्टि रे देखी उद्धार करिबा माँ थी तेणु माँ को जेमिति भावरे सम्मान दवा कथा तांकर संतान हिसाबरे यही सेवक माने तांकु सम्मान दउछंती। माँ जेतेबेले आसंती से केतेबेले तळकु मुह करी आसिबे नाही किंबा पादरे चाली

0: जगन्नाथ।
1: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कि अपूर्व शोभा आमे देखिबा को पाउछु। समस्तंकर दृष्टि सिंहद्वार उपरे निबद्ध, कारण वर्तमान बड़ ठाकुर बलदेव से तालध्वज रथरे आरूढ़ होइगलेनी, एवं देवी सुभद्रा मध्य से मध्य दर्पदलन रथरे आसीना, एवं तांको सहित से ही चक्रराज सुदर्शन से मध्य से रथरे विराजमान करी सारिछंती। गोटिए रथ नंदी घोष रथ, जो नंदी घोष रथर नाम अनुसार ये यात्रार नाम घोष यात्रा होइछि, नंदी घोषरु घोष यात्रा, तेणु ये घोषर यात्रा अर्थात नंदी को छाड़ी ये घोषर यात्रा, घोष यात्रा। एवं आउ गोटे अर्थ मध्य आमे काढ़ी पारिबा, वर्तमान घोष को यात्रा, घोष यात्रा, घोष अर्थात गौड़पल्ली, जो गौड़पल्ली रे गोपांगना माने अछंती, से गोपांगना मानक सहित रासलीला करबा पई महाप्रभु प्रतिश्रुति बद्ध, एवं स्वयं महाप्रभु महालक्ष्मी को सांगरे ननेई जाउचंती से घोष को अर्थात से गौड़पल्ली को, जोठी गोपांगना मानक सहित तांकर रासविहार हब। आपण माने जानंती ये जो यात्रा काल रे महाप्रभु जेतेबेले सात दिन धरी गुंडीचा मंडप रे अवस्थान करिवे, ए गुंडीचा मंडपटी होची गोटे रासस्थली, ए रासस्थली रे तीन दिन काल अर्थात सप्तमी अष्टमी नवमी ए तीन दिन धरी महाप्रभुंकर रास उत्सव अनुष्ठित हबो। सेथिपाई श्री मदन मोहन से मध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभुंक सहित जाउचंती, एवं श्री मदन मोहनंकर निकटरे यही रास उत्सव अनुष्ठित हुए, गोपांगना माने अपेक्षा करि रहिछंती, एवं सेथिपाई महाप्रभु सांगरे महालक्ष्मी ठाकुरानी को न नै केवल जाउचंती, कारण से स्थान रे रास उत्सव अनुष्ठित हब। एवं आपण माने जानंती यही रास उत्सव सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन धरी काहीं अनुष्ठित हुए ना, महाप्रभु जेतेबेले जिबे गुंडीचा मंडपरे अवस्थान करिवे से समय रे यही श्रीमंदिर अधिष्ठात्री देवी माँ श्रीदेवी बा महालक्ष्मी ठाकुरानी से मध्य महाप्रभुंकर विरह को सह्य करि नपारि तांकु टिके साक्षात करिबा पई से मध्य जन्मवेदी आड़े जिबे। हेरा पंचमी दिन से मध्य जाई सेठारे पहुँचिबे, तेणु हेरा पंचमी रु से फेरिला पर दिन ही रास उत्सव अनुष्ठित हबो। वर्तमान आमे देखुचु से रास विहारी महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान आज 22 पहाच अतिक्रम करी माड़ी आसुचंती। नीलाद्री सिंह जहाँ को कोटि कोटि जनता आज सारा विश्व रे अपेक्षा करी रही, किए टीवी परदा सम्मुखें अच्छा को माने आमर बेतार केन्द्र बेतार जंत्र को आखि आगे रखिक ध्यानमग्न होती, आउ जो जनता एठा को आसी ये वर्षा को भ्रुक्षेप नकरी से माने अपेक्षा करी रही, केतो बले से ही चका चका आखिरे तांको आखि को मिसेई देवे, से पूरा आमर एकमात्र संखाली, से आमर एकमात्र धन। भगवान कहिसंती अरे तो देह तो ही मुही रही अच्छी, मोह देह तो ही तुही तो मो तो संपर्क हिसाब करिले बेल तो अंटिब नाही, तेणु तो आउ मो भितरे कौनसी संपर्क कौनसी भेदभाव नाही। भगवान कहिसंती मु होची ईश्वर एवं मु ही तो देहरे विराजमान करिछि। श्रीमद भगवद गीता रे कहिसंती ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसर जन तिष्ठति, हे अर्जुन प्रत्येक प्राणी रो हृदय देशरे मु ही से ईश्वर जे कि समग्र संसार शासन करता मु ही सेठारे विराजमान करुची, तेणु तो देह भितरे मु अछि, तो एवं मोर संपर्क जीव परमर संपर्क, मु होची परम तू होचु जीव, जीव एवं परमर भेत भेट जो दिन हबो सेई दिन भवसागर ऋतु उद्धार पाइज रे। सेति पई भक्त प्रति मुहूर्त रे भगवान को चाहिछि, भगवान निजे स्वतुंड रे कहिछंती स्नान गुंडी चाहे बेनी।

0: प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ पथे देखा दियो नीति हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आ विलंब कर नाही आसो आसो आमे आपणंकु देखिबा कु व्याकुल होउछु बड़दांड रे गोपी गोपांगना माने अपेक्षा करिछंती समस्त दर्शन करिबा पई चक्र बनाडी बुलाउछंती किए मध्य सुंदर भाव रे पताका कु जे बनाडी करी बुलाउछंती आ सिंहतर सिंह द्वार रो सेइ पतित पावन विग्रहंक पाखरे पतित पावन स्वयं निजे पर ब्रह्म जगन्नाथ रही अपेक्षा करी को भक्त को अपेक्षा करी प्रभु आउ कहीं विलंब करुच कालिया कानो विलंब कर कहीं
1: ये मुदिटी भलो लगुची पत्नी को पसंद आसीबो
2: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुवा
1: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कउठी मिलिबो
2: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
3: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि
4: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करिबा पई पूर्व

प्रार्थना करुचु ये प्रार्थना आपण नवेदन करुचु ये प्रार्थना आम घेना हूँ आपण बाहरी आसतु गुमट भितर ये जो कथा ये कथाटा केते अंतरंगता महाप्रभु प्रति आमर तैयारी करुचु एवं ये जातिर महाप्रभु सहित जो संपर्क से संपर्कटा पृथ्वीर अन्य कौन सी देवता क्षेत्र में यहाँ अच्छी मोर अंत धारणा ना।

0: cfpc@rbi.org.in रे ईमेल करी अथवा सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17 चंडीगढ़ 16017 ठिकाना रे डाक द्वारा पठाई अभिजोग दाखल करि परिबे
1: मने रखंतु सीधा सडक भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समैन को निकट रे दाखल होइतिबा अभिजोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
0: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी
2: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
3: आमे वर्तमान देखि पारुचु अति सुंदर भावरे महाप्रभुंकर से अनन्य लीला वर्तमान पहंडी होई आसुछन्ति जगन्नाथ महाप्रभु कालिया ठाकुर आउ कोडन भितरे जो कुहा जाइथिला जे लोक माने रहिबे नाही केवल शृंखलित भावरे हब किंतु आमे देखुचु भाव विहळित होई अनेक श्रद्धालु एवं एवं अनेक व्यक्ति से कोडन भितरे आसी समस्ते पहुँची जाइछन्ति सेथिपाई बोधुए जगन्नाथ महाप्रभुंकर पहंडीरे विलम्ब देखा जाइछि तथापि चारमाला आळकु प्रभु अग्रसर होउछन्ति घंटुआंकर घंट नाद अधिकरु अधिक तीव्रतर हेबाकु लागिछि आउ आलट चालीछि चामर चालीछि छत्री मध्ये चालीछि तरास मध्ये रहिछन्ति एहि सब वाद्य हुळहुळी हरिबोल एहि नादरे प्रकम्पित होउछि बडदाण्डर सेहि रथ निकटस्थ जो दृश्य आम अवलोकन करुचु प्रभु होउछन्ति सेहि कालिया शांत जे त्रिभुवनर ठाकुर बंधु पणे बंधु उड़ाओ केतन जगबंधु सम बंधु नाही बोली आन जगबंधु बोली तुमे भव जगतरे जगतवासिंक तुमे अति आपणार प्रभु आपण परा होउछन्ति जगतर से ठाकुर अति आपणार आउ एपटे सिंह द्वार से गुमुट खाली होइगलाणी प्रभु वर्तमान बड़छता मठ निकटस्थ सेठारे रहिछन्ति बड़छता मठ पाखरे जो बड़छता मठरु वैष्णव अग्नि आमर सेवायत मान कि कौनसी व्यक्ति जो जेतेबेले मृत हुवंते तांकु मध्य सही वैष्णव अग्नि दिया जाइथाए खाली सेति के नुए बड़छता मठर रहिछि मंदिर सहित संपर्क जगन्नाथंकर प्रातः समयर से मंगल आरती गीत गान करबा सहित रात्र समय रे जेतेबेले प्रभु पहड़ जानती से पहड़ समय रे मध्य ई बड़छता मठर जो रहिछंती सब महंत आ सब शिष्य माने मठर व्यक्ति माने संकीर्तन बाध्य करी प्रभु को गीत गोविंद गान करी तांकु शयन कराई थांती से बड़छता निकट रे प्रभु वर्तमान अछंती कालिया शांत झुली झुली आसुछंती आउ एपटे सड़क सुंदर बड़दाण्डर सभा मत्य मंडल रे एभली ठाकुर कोठी नहांती जेमिति ठाकुर को केही केबे देखि नहांती जे प्रभु को जेमिति अर्पण करिला प्रभु मध्य निजे कहिसंती नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच मदभक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद मु कोठी नहीं मु केवल सेठी अछि जोठी मो भक्त माने मते मोर नाम उच्चारण करुछंती संकीर्तन करुछंती गान करुछंती मते खोजुछंती मु तते खोजिले तुपरा मते खोजु प्रभु होउछंती से ठाकुर आमे तांको अति आनंदर सहित आज कोलाकृत करिछंती से दैतापति सेवक गण से दैता वंशधर विश्वासु जो वंशर दायद माने आज प्रभु को नहीं आसुछंती पहंडी विजय करी आ प्रशासनिक स्तर रे मध्य व्यापक व्यवस्था करा जायछि श्रृंखलित भावरे प्रभुंकर एही यात्रा किपरि समापन करा जिवो सतरे प्रभु आपण होउछंती सेई कालिया शांत जो कालिया शांत को आमे देखुचु से सुंदर भावरे रथ बड़छता मठरु टिकिए आगो को चली आसिलेनी जो रामदया परिषद जो रहिछि गोटे रामदया परिषद से स्याहा मध्य से बड़छता मठर संपृक्त गोटे परिषद जोठी से रामदया परिषदर सम्मुखरे जगन्नाथ महाप्रभु मस्तकरे सिना ताहिया नाही तुलसी लागी होई प्रभु अत्यंत सुंदर देखा जाउछंती लाल रंगर हितो गोविंद खंडुआर पाट उपरे मस्तकरे तुलसीर माळ धारण करी प्रभु आलट चामर छत्रा तरास ता संग को दयणा माळी माने जो फूल को सिंचन करुछंती

0: मदन मोहन वर्तमान विजय करिवे एवं मदन मोहन विजय कला परे सोलचिता लागिवो बेश हबो एवं गजपति महाराज आसीबे तेनु वर्तमान ए पहंडीरो पहंडी जात जो पहंडीरो वर्तमान अंतिम पर्याय रे आमे उपवेशन करिचे उपस्थित होइचे मु वर्तमान द्वितीय बूथ रे प्रताप चंद्र त्रिपाठी महोदय को निवेदन करुची से धारा विवरणी प्रदान करंतु।
1: देहं सदा परिभवघ्न मभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्।

0: प्रकार सेवा ये सेवा भितरे बांधी होई गोटे कार्य को निर्विघ्न करिबा दुरुह व्यापार आमे कहिबू एठी केवल महाप्रभुंकर करुणा ही सब कार्य को संपन्न कर देउछि। एते प्रकार मन आम परिवार रे आपण माने अनुभव करंतु पांच जन तीन जन दस जन परिवार भितरे केते समस्या आसुछि। ये जदि रुसिलाणी सीए मन उणा कलाणी सीए मध्य कहुची मते अणदेखा करा जाउछि विभिन्न प्रकार समस्या भितरे परिवार पुणी आगो को चालुछि। आउ ये जो महाप्रभुंकर परिवार ये जो बड़ ठाकुरंकर ये जो बड़ व्यवस्था ये श्रीमंदिर व्यवस्था सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य सेति पाई कुआ जाए देवान देवो न जानाति कुतः मनुष्य मनीष जानी पारिबनी वास्तव रे केमिति संपन्न होउची ये लीला किए आनी कौन जोगेइ देउची किए वाद्य बजाउची किए तुलसी आनी देउचंती किए धूप दीप लगे प्रस्तुत अच्छा ये बड़ वर्षा आज सका लग रही महाप्रभुंकर नीति यथापूर्वम से हीपरि चली रही कौन सी उणा ना मनीष भक्त मानकर सचराचर ब्रह्मांडर छपर कोटी जीवजंतु समस्ते अवलोकन करुछंती ये दिव्य लीला को से पूरा स्वयं लीला आसी जो दुईटी जात्रा को छाड़देले आउ जो जात्रा गुड़िक रही दसटी जात्रा गोटी उपजात्रा एगारटी जात्रा से महाप्रभु चलती विग्रह श्री श्री मदन मोहन रामकृष्ण को पठाती किंतु एकमात्र दुईटी जात्रा से रखिंट स्वयं लीलार आसवे स्नान बेदीकृत तो से मंदिर भितर आसी पुणी पलि जाऊ मात्र रथजात्रा रे एक अवकाश रही था भक्त पाखरे से मन भरी तार प्राणप्रिय ठाकुर को भावरे बांधी पारिब से तो भकत भावरे बंधारे से तो भकत जीवन धन से भकतर जीवन धन जे प्राणस्वरूप जे घरे बसी अपेक्षा करी जगन्नाथ रथारूढ़ हेले से गंडे खाइब से सका खाईना व्रत करी महाप्रभु पूरा आसुंच रथ को तेणु ये होची जगन्नाथों प्रति ये ओडियार प्राण भक्तर प्राण जगन्नाथ को भल पाता व्यक्तिर चरित्र
1: शुणुले शखक्षेत्र पुरी ठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारावरणी धारावरणी प्रदान करुले डर शांतनु कुमार रथ डर नरेश चंद्र दास डर कल्याणी नंदी डर हरिहर काननगो एवं श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी
2: संबाद पढ़ुछंती सुचिस्मिता साहू मुख्य संबाद पुरी श्रीक्षेत्र बड़दाण्डरे चली विश्वप्रसिद्ध रथजात्रा रथारूढ़ हेले चतुर्धा मूर्ति हरियाणार जिंद रेल स्टेशन रे देशर प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलाचल आसंताकाली शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री अधिक वयस्क किंबा गुरुतर रोगरे पीड़ित कैदीक शीघ्र मुक्ति नहीं एक समन्वित नीति प्रस्तुत करने केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रगुड़िक मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग नहीं गुरुत्वारोप कले जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एवं जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल रे पहुंचिले पीवी सिंधु पुरी श्रीक्षेत्र बड़दाण्डरे चली विश्वप्रसिद्ध रथजात्रा निर्धारित कार्यसूची अनुजाई चतुर्धा मूर्ति नीतिकांति जारी रही धाड़ी पहंडी प्रथमे प्रभु सुदर्शन एवं परे परे बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा पहंडी विजे रथारूढ़ हो सारे महाप्रभु श्रीजगन्नाथ एवं नंदीघोष रथ उपरकू विजे कर प्रबल वर्षा सत्वे पुरी बड़दाण्ड में अगणित भक्तों भिड़ लग रही कार्य निर्घंट अनुजाई मध्याह्न तीनटा मध्य छेरापहरा कार्य संपन्न अपराह्न चारिटा रथटणा आरंभ हो स्थिर रथजात्रा अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

0: heads of national standardization bodies meeting being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. PV Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
3: क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क निर्माण

0: क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
0: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
2: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज

0: अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लक्षे राजार मौड़मणि श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आद्य सेवक ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव तामजान रे जाउचंती तिनि रथ को दर्शन करिबा सहित राजवंदापना करिवे, राजनीति वंदापना करिवे, छेरा पहरा करिवे। आउ टिके आगुरु आमे प्रथम केन्द्र रु सुनुतिले जे जगतगुरु शंकराचार्य तिनि रथ परिभ्रमण करी प्रदक्षिण करी से महाप्रभु को समग्र जगतर कल्याण पाई मंगल पाई चिंता करुथिले। तापरे आज जो वर्तमान जाउचंती तामजान रे वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर विराधि वीरवर जो भूत भैरव जे कि ओडिशार मौड़मणि ओडियार राजा जे कि राउतरु राजपुत्र होती जो राजा आज छेरा पहरा करिवे ये एक पारंपरिक विधि। तामजान जाउचंती जोध्रुवेशर जाउचंती धला पोशाक एवं मस्तक शिरस्त्राण एवं आगरे जो छती तरास पदंतरी बाजा देउलकरण सहित जाउचंती राजगुरु मध्य सहित जाउचंती पारिषद वर्ग राज नर पारिषद वर्ग सहयोग रे जाउचंती जोड़हस्त हाथ जोड़ी प्रभु को दर्शन करने सहित जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई जाउचंती गजपति महाराज। ये एक सांस्कृतिक परंपरा 1970 मसीहारु 2026 दीर्घ 56 वर्ष हला महाप्रभु जो महाप्रभुंकर जो सेवा करुचंती ये एक अलभ्य सेवा। कारण राजा एवं प्रजा जे समान साम्यवादर समाजवादर मानववादर देवता होती महाप्रभु जगन्नाथ। एठी समस्ते समान थिबारु गजपति महाराज जो जोड़ हस्तरे अति अनुनय विनय पूर्वक न्यूछाली होकर आज जगतर कल्याण पे जो अनुकूल पाग परिवर्तन जो प्रतिकूल पाग चली इंद्र देवता आकाश रे थाई जो पुष्प वृष्टि करुचंदी से पुष्प वृष्टि को खातिर नकरी श्रद्धालु भक्त माने असंख्य भक्त माने बड़दाण्ड रे रुंड होइचंदी। बड़दाण्ड आज जनाकीर्ण आमे भावुले जे बोधे आज अल्प लोक हे अल्प आसबे किंतु देखा जाउची जे प्रभुंक दर्शन पई श्रद्धालु भक्त मानक भितर केते आवेग केते उत्कंठा। तेणु पाट छत्री तले मेहनारे बसी रथ पर्यंत आसुचंती गजपति महाराज सौम्य दर्शन गजपति मस्तक शिरस्त्राण देहरे श्वेतरंगर चूड़ीदार पंजाबी उपरे उत्तरीय जगन्नाथंकर चलती प्रतिमा होती गजपति महाराज एवं से जो छेरा पहरा कार्य करिवे ता होची चंडाळर कार्य देवतार सेवा कर्म रे राजा चंडाळर भेदभाव नाही। गजपति राजांकर उन्नत राजक्य मस्तक अवनत हो जाए महाप्रभुंक पाखरे। तेणु ये जो भंडार मेकअप तांकु जो देवे ये जो पारंपरिक विधि विधान जो कार्यक्रम ता एठी सूचाई दौची जे जगन्नाथ संस्कृति रे समस्ते समान समस्तंकर जे भली समान अधिकार रही एवं राजा एठी चंडाळ बेसर जो छेरा पहरा कार्य करिवे एठी भक्त जनतार कलकल्लोल रे जेंदे बड़दाण्ड आज प्रकंपित हो उठुची एठी मनीष एक धर्म एक छेरा पहरा एठी मैत्री बोधर प्रतीक एई गुंडीचा महोत्सवर पारमार्थिक महाभावर स्मारक हेउची एई पवित्र छेरा पहरा। तेणु छेरा पहरा प्रमाण कर जे अवतारी पुरुषंकर सृष्टिलीला एवं सकारात्मक तत्वलीला अवकाश रे पुण्यपीठ बड़दाण्ड रे राजा प्रजा शासक शासित साधारण असाधारण क्षेत्रीय चंडाळ समस्त समान समस्त पार्थिव सत्तार परम ओ श्रेय धर्म हेउची सेवा बोध जो सेवा को उल्टे देले बासे। वर्तमान मु प्रथम बोध को वर्तमान निवेदन करी से वर्तमान परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करने पर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
1: धन्यवाद डॉक्टर हरिहर कानून महोदय। आपणकर बूथ सामने द्वितीय केन्द्र सामने गजपति महाराजा श्रीनगर गजपति महाराजा से बाहर आपर धारा बरणी दे सी तुरंत आम आड़े चली आसे तेणु द्वितीय केन्द्र रु प्रथम केन्द्र को आम धारा बरणी आनलु ये कारण

0: दूजी। जय जगन्नाथ,
1: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वास्तवरे आज जो यात्रा आषाढ़ श्यामल पक्षे द्वितीया पुष्या संयुते चराचर हिताय अर्थे घोष यात्रा विधीयते। ये हूँ से घोष यात्रा, जो घोष यात्रा रे समस्त जगतर कल्याण करिबा निमन्ते आज से आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि, जो द्वितीय तिथि रे महाप्रभु आज प्रावृत रास एठी निजे प्रदर्शित करुछंती बा समस्त आज गोपी गोपांगना मानंग सहित सते जेपरि से द्वापर जुगर प्रावृत रास आज एठारे करुछंती ए सिंह द्वार सम्मुखरे बड़ भाई बलभद्रंक रथरे जो चारि गोटी घोड़ा बा अश्व वर्तमान जोचा सारिलानी सुंदर भावरे वर्तमान दौड़ी जो बासुकी नामकर रज्जु ताकु मध्य बंधा जाउछि। आ घोड़ा जो घोड़ा होउछंती प्रतीक अश्व मनीष जीवनर जो जीवन संसार को जेतिके अधिक रु अधिक आगे नेबा पई से घोड़ा होउछि एक कर्मर प्रतीक। सेइति पई जेतेबेले गजपति महाराज श्रीमंदिर रे प्रभु को दर्शन करबा पई जाइथांती दक्षिण द्वार दे जाइथांती, दक्षिण द्वार रो जे रहिछंती वाहन से होउछंती घोड़ा अश्व। काहीकि ना घोड़ा तार जीवन रे केबे हेले भी सुए नाही, आ जो दिन घोड़ा तले सोई पड़े सेई दिन तार मृत्यु हेथाय। आ दक्षिण द्वार होउछि अर्थर द्वार, गोटे राजा पाई अर्थर आवश्यकता रहिछि तार प्रजार पालन पाई। ठीक सही परी मनीष जीवन कर्म चंचल हेबा पाई घोड़ा परी गति करुछंती ये बड़ भाई बलभद्र कर्मर प्रतीक। तांकर जो चारि गोटी घोड़ा बा चारि गोटी अश्व शंख सुचित्र अंगद मेघनाद आ मास जगज्जननी देवी सुभद्रांकर रथर जो अश्व रोचिका मोचिका जीता अपराजिता एवं तांकर जो रथर जो दौड़ी जहाँ होची स्वर्ण चूड़ नामक रज्जु। आ बड़ भाई बलभद्रंक सहित जेतेबेले जगन्नाथक रथकु आमे तुलना करिबा तांकर मध्ये अश्व रहिछंति कला घोड़ा विपरीत भावरे। जगन्नाथ होउछंति कला रंग किंतु तांकर घोड़ा बा अश्व होउछि धळा। बड़ भाई बलभद्र शशांक धबल किंतु तांकर अश्व होउछंति कला। ठीक सेहिपरि मध्ये तांकर जो चारि गोटी जो घोड़ा रहिछि जगन्नाथंकर अश्व ताहा मध्ये ज्ञानर प्रतीक भक्तिर प्रतीक। जगन्नाथ होउछंति भक्तिर प्रतीक, बड़ भाई बलभद्र होउछंति विश्वासर प्रतीक, माँ देवी सुभद्रा होउछंति ज्ञान। जदि आउ से ठीक सेहिपरि दुई गोटी जो शुक पक्षी आमे देखुछु जो कलस दधि नौति पाखरे जो दुई गोटे शुक पक्षी रहिछंति बड़ भाई बलभद्रंकर सी होउछंति दुईटी शुआ श्रद्धा एवं विश्वास। माँ देवीकर श्रुति आ स्मृति मध्ये तांकु कुहा जाए। आउ ठीक सेहिपरि जगन्नाथकर रथर दुई गोटी सुआ जहाँ हूँ जीव आ परम जी संसार एकमात्र पुरुष हूँ पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम जगन्नाथंकर नंदीघोष रथर जहाँ अश्व शंख बलाहक सियत हरिदास एवं रजु हूँ शंख चूड़ नामक रजु। सुंदर भाव श्रृंखलित भाव किपरि रथर ये टणा कार्य आरंभ वर्तमान निर्देश दि जाऊँगी आरक्षी बाहन मानू निर्देश दि जाऊ। सबुठार बड़ कथा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एत समर्पित भावन प्रभुंर कार्य संपादन करजे तत्वधान करुंटी देखुं श्रृंखलित भाव केमी हम चारमा बंधा फिटा जा आरंभ कर दीर्घ तीन घंटा हे आम देखुचु ये राधावल्लभी मठ सम्मुखें श्रृंखलित भाव महाप्रभुंर कार्य किपर हम से चिंता चेतन निजक समर्पित कर प्रभु निकट कि समय मुहूर्त निर्देश आसला डाहुक सेवक माने मध्य प्रस्तुत हो गले बेत धरी समस्त को कहिबे रथ टाणी नेबा पाई। आउ बाजी उठिब विजय कहाली कहाली ताले जमती बाजी उठिब संगे संगे घंटुआ माने जो घंटुआ घंटी मुंडा थारू आरंभ करी श्रीक्षेत्र पुरी बाड़काटी एवं अनेक जो खरड़ा वंश सहित कंसारी संप्रदाय वंश भी कहा जाए से संप्रदायर व्यक्ति माने रथरे रही आरूढ़ हो घंटा बाजिब घंट घंटुआ उत्खसर सहित हरिबोल हुड़ाहुड़ी ता संग को जय जयकार ध्वनि रे प्रभुंकर रथ आग को बळी चलिब। विश्वास रूपक से रथ मनीष भितरे विश्वास नथिले श्रद्धा नथिले उत्साह नथिले जीवन रे सफलता मध्य आसीबा नाही। ए होची यहार गूढ़ तत्व।

0: टणा हबो केमिति मात्र 20 रु 30 फुट आसीछि हमर बड़ ठाकुरंकर तालध्वज रथ जदि लोक गहळी एई भळी चले कुआडे गले हमर आरक्षी बाहिनी मानकु हमर विनम्र निवेदन जो 15,000 आरक्षी बाहिनी रथयात्रा रे नियोजित थिले सेमाने जदि एई लोकंकर जो आवेग उत्कंठा लोक जो भळी भावरे समुद्र रो स्व भळी नई रो स्व भळी जो माड़ी चलुचंदी ताको अटकेब किए बंधुगण श्रोता बंधुगण आपण मानक आम कहवाक चाहूँ जे लोकंग भितर केते आग्रह लोकंग भितर केते उत्कंठा लोकंग भितर केते जो विचार याको आपण देखिले अनुभव करिपारिबे जे सतरे बलभद्रंकर तालध्वज रथ आउ आग को जाई पारिबो नाही जदि आग को जीव ताले लोक जो जनसमुद्र ताको अटकेबाक पड़िबो गजपति जेतेबेले छेरा पहरा सारी राजनगर को चली गले तापर आरंभ हो गला भिड़ ये असंभव भिड़ ये असंभाल ये भिड़ को रोकी रोका न गले आग को रथ आउ जाई पारिबो नाही श्रोता बंधुगण एवं लोकमानंकु आमे कहिले मध्य पुलिस बाहिनी कहिले मध्य रथ अमीन बड़ पार्टी रे घोषणा कले मध्य
1: डॉक्टर कानून को
0: हाँ जय जगन्नाथ वर्तमान आपण
1: मते सुनि परचंदी देख लो हाँ अच्छा हाँ जय जगन्नाथ कहिले जे देखंतु 15,000 आरक्षी बाहिनी से डीजिंग को ठारु
0: जय जगन्नाथ
1: बाहिनी को पर्यंत नियुक्त अछंदी
0: आज्ञा
1: किंतु नियुक्त थिले मध्य 15,00,000 लोकंकु 15,000 आरक्षी बाहिनी कोण बा करि पाइबे
2: आमे जहा अनुभव
1: करतो जेतेबेले एते विपुल जनसभागम होउची सेमाने त प्राण पणे आपण त कहुथिले सकाळ 4टा रात्रीरु आसिकरि भोररु सेमाने ए पर्यंत सेमिति बड दाण्डरे ठिया हिचंदी तांकु मध्य कम कष्ट हो नथुव एवं जो आरक्षी बाहिनी आसिचंदी तारि भितर बे आमे देखुचु कहार बयस 55 हलाणी सबु अवसर समय अवस्था रे पहुचिबो अधिकारी माने मध्य ड्यूटी रे आसिचंदी
2: आमे समानकर
1: कष्ट रो सीमा नाही एवं खाली पादरे डीजी पुलिस एडीजी पुलिस आउ मंदिर प्रशासक पुरी रो जिलापाल पुरी रो आरक्षी अधीक्षक एमाने वर्षारे तिंती बुड़ी खाली पादरे बुलिकी चेष्टा करुछन्ते सबु सुंदर भावरे करिबा पई कोन करि पारिबे सेमाने ता सहित
2: हमर
1: जनसाधारण को मध्य सहयोग रहिबा दरकार गोटिए कथा हमको जानिबा को हबो जे 15,00,000 लोकंकु 15,000 पुलिस तेणु सेतरे मध्य साधारण भक्त श्रद्धालु जो माने व्याकुलित होकर विशृंखलित हो जाऊपर मध्य रथजात्रार निर्विघ्न समापन समान दायित्व रोचे आम जदि समस्ते सहयोग न करवा केते लोक कौन कर देखते बर्तमान रथ चकड़ा रे आउ दुईट रथ उपस्थित अच्छा ये रथ चकड़ा मध्य जनसमुद्र में परिणत होपण तो कहते कि समय पूर्व आपण सम्मुख भाग जनाकीर्ण रही नियंत्रण बाहर को चली जबार आशंका रोचे तथापि आम आशा करवा सब असुविधा न होकर सुंदर भाव एवं जो आरक्षी बाहिनी मान अच्छा बर्तमान स्वयं आलुह जलुची आपण मैंने तो आम रेडियो कहू आप देखी पार नए प्रकृत में पखापाखी 500 पखापाखी 500 रु अधिक हम आरक्षी बाहिनी जो मैंने रथ को कड़न करी से जो बेश पोशाक पिंधि से बेश पोशाक आलोक संयोजित होती देह गुड़िक बर्तमान प्रज्वलित अवस्था आमको देखा बड़ सुंदर देखा सीठ आप देखिपुर आखिरी पड़ू सेठिकार वर्णना आपड़ एथर करूँ मुझे बाधा देली से क्षमा चाहूँगी कारण यार कथा किसी कहार तेणु आपण को अनुरोध आपठिकार धारा बरणी प्रदान जारी रखु
0: जय जगन्नाथ शांतन बाबू भल कथा आप कहते किंतु वर्तमान बड़ दांड सिना किंतु जेतिकी लोकंकर समागम ताकु नियंत्रण करिव किए श्रद्धालु भक्त मानंकु नियंत्रित करी ठीक भावरे तीनी रथ को आगो को नबो किए खाली कोन डीजी एवं एडीजी

0: एसपी मान नहीं पारे आमर जो श्रृंखलित भाव में जो पुलिस भाई मैंने अच्छा आरक्षी भाई मैंने अच्छा से मैंने सीना टाणिक आग को ने श्रद्धा भक्त मानू नियंत्रित करे बर्तमान पूरा पूरी भाव में बड़दाण्ड जनाकीर्ण बर्तमान तीन रथ सम्मुखें एवं तक पथपटे बहुत प्रकार लोक भेड़ रही कहते तीन घंटा रु चार घंटा काल ठिया जो लोक मैंने रही धर्यच्युति घटी वर्तमान से माने आवेग उत्कंठार सहित जो माने घंटा घंटा धरी अपेक्षा करें रही पारे ना ये भगवान प्रति भक्तर आकुलता व्याकुलता केमी मु रथ दौड़ी छुईबी केमी मु रथ दौड़ी टाणी यही ज्ञान भितर आसूची वर्तमान मुझे प्रताप त्रिपाठी महोदय को निवेदन करी से यार परवर्त धारा विवरणी प्रदान कर
1: आमे जहाँ दर्शन करूँ जे पर्यंत गजपति महाराज फेरवा समय श्रीनगर को सही पर्यंत समस्त लोक मान जो बारिगेट संपूर्ण ठीक थिला गजपति महाराज जितेबले से बारिगेट को डेर श्रीनगर गले तार 10-15 मिनट पर हठात बारिगेट को एमिति मुकुला रहीगला अवहेला कौट रहीगला जहाँफल कि जनसमुद्र रथ त्रय निकट को मारीगले जदि रथ त्रय निकट को आगर पक्षर सबुआ लोक मैने घेरी जिबे तेबे रथ दौड़ी रहीबार जगा कौट रथ आग को घुंचार जगा नपाइले शून्य स्थान नपाइले किपरी आग को जीव तेणु वर्तमान से ही समस्या रे बड़दाण्ड में बड़ विकल लगुची ये तो भक्त भगवान ये तो लीलावली कह पड़ अं कि नुहे किंतु जदि प्रस्तुति रे कौन सी त्रुटि रहा निश्चित भाव अक्षमणीय तेणु आम को गुरुत्व देवाक पड़ लोक मैने स्थान ठीक भाव रे जदि आम को आमर निर्दिष्ट लक्ष्य आम को चलवाक पड़ तेणु बर्तमान जोपरी भाव लोक मान भाव बड़ बड़ ठाकुर रथ को टाणी चेष्टा करा अच्छा रथर अमीन सी निर्देश दौंट डाहूक निर्देश दौंट आम आशा कर महाप्रभु आम कर चरण कृतंग कायज कर्मजंग श्रवण नयन जंग मानसंग अपराधम विहित मबिहितं बा सर्वमेत दक्षमस्व जय जय करुणार्धे श्री महादेव शंभु हे प्रभु हे महारुद्र हे अतिरुद्र हे बड़ ठाकुर बड़वाड़ सामंत बलियार भुज श्री श्री बलदेव महाप्रभु तुम्हें आग को आसी जाओ जन्मभूमि को तुमर जो गमन ताहा निश्चित हो जाऊ एवं भक्त माने तुमको श्रद्धारे भक्ति रे आग को नहीं जीवे तुम्हें टिके एडी तुमर रुद्र रूप को प्रकाशित कर भक्तों भितरे से चेतना से भावनार आसु माँ सरस्वती को आम प्रार्थना करुचु हे बीणा पाणी तुम्हें सब भक्तों भितरे से प्रकार चेतना दियो महाप्रभु कृपा दृष्टि सब भक्तों ऊपर रही हे श्रद्धालु माने भक्त भगवान जो दिव्य लीला ये दिव्य लीला भितरे विश्व ब्रह्मांड ए लीला को दर्शन करुची केते व्यग्रह जाति केते सही पारुना भगवान ठार तार दूरता को सही पारुना तेणु बुझे समस्ते पुणी बुझे एवं महाप्रभु को आणवे ये होची घोष यात्रार एक प्रमुख समय जेतेबेले पवित्र दौड़ी को बासुकी स्वर्णचूड़ शंखचूड़ ए रथ त्रयर ये नाग समूह ए माने दौड़ी ए रथ दौड़ी को स्पर्श करदे समस्त विष देहर ओल्लै जाए बोली आमर कथित अच्छी आम परंपरा आम को कहती तेणु यही रथ दौड़ी को धरी महाप्रभु को बाही नेबा महाप्रभु को टाणी नेबा जो महाप्रभु ये जगत को कल्याण करुछंती जो महाप्रभु ये जगतर कथा को बुझुचंती जी समस्त चलनाक्षम करउचंती अचल को सचल करउचंती आमे जेते बेले आमर शारीरिक अक्षमता

0: रथ आगकु आगकु चालिबे जहाँ वर्तमान आम शुभ लक्षण देखिबाकु पाउछु लोक माने बुझी गलेनी जे आमे केउ प्रकार रे आमर कर्तव्य को संपादन करिवु एटी समस्ते जणे जणे सेवक समस्ते जणे जणे पूजक समस्ते जणे जणे श्रद्धालु भक्त
1: प्रभु तो काउ किछि कहि परिवेनी से तो निधा विष्णु तांकु जे काय मन वाक्य रे दिहात टेकी देई संपूर्ण भाव रे क्षमाश्रित हो जाए प्रभु ताकु क्षमा दियंती हे बड़ ठाकुर हे बलियार भुज हे अनंत हे वासुदेव हे हल मुसल धाड़ी हे अष्टजल पद्मरे जो रथ निर्मित होई ये अनंत नाग शिशु अनंत तमे ही अनंत तमे ही बलभद्र तमे ही बलियार भुज तमे जो भाव नहींक्री श्रद्धालु भक्त मानू नहीं जावाई जो चिंता करुच गड़ा गड़ा तालध्वज रथ उत्कंठा आज आगे चलुची रथ मध्य आगे चलुची
0: घंटुआ मानकर घोर घरघर नाद श्रद्धालु माने आगकु आगकु आसी जाइछंती तेणु निश्चित भाव महाप्रभु तांकर गंतव्य पथरे जिबे से छाड़ीदे श्रद्धालु उपरे कहीं सी महाप्रभु सी होती अकर्म कर्मदायक जहाँ आम कर्म ना महाप्रभु आनी दे दिंती किंतु बड़ समस्या रुचि जे जो सिंहद्वार जो थाना आमर रही बागेड़िया धर्मशाला से धर्मशाला रो निकटतर रही तालध्वज रथ क्रमे क्रमे निकटतर हो अर्थात दक्षिण पार्श्व को डाहाण पट को रथ माड़ी रही तेणु किपरी भाव कौशल क्रमे पुणी दांडर मझी को आनी पारिबा एवं भक्त माने से चेष्टा करुछंती सम्मिलित भाव प्रशासन भक्त एवं श्रद्धालु सेवायत समस्त भितर गोटे कार्य बर्तमान चली आम महाप्रभु रथ को बड़दाण्डर मझी पर्याय को मझी स्थान को किपर आनी पारू से चेष्टार समस्ते अच्छा आउ श्रोता बंधु आपण मैंने जापे बालीसाहीर से गली मुंडरु आउ गुंडीचा मंदिर पर्यंत संपूर्ण भाव नर नारायण मानकर भक्त भगवान जो पवित्र महार्घ्य मुहूर्त जो थे समस्त भितर आवेग आम जन्म जन्मांतर पाप को ये भस्म करदेबु ये नष्ट करदेबु आउ महाप्रभुंकर आशीषर बड़दाण्डर धूली रथर दौड़ी को मुंडरे मारी आम पुण्य अर्जन करिबु आगकु आगकु आसुछन्ति सुंदर भावरे
1: आगेला बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथ एवं जो मैंने हलद धला ग्रीन सबुज रंगर जो पुलिस भाई मैंने ये तालध्वज रथ दायित्व अच्छा से मैंने आगक जाऊँगी बाँ पट को माड़िक रही धीरे धीरे मझी आड़ आसुची तेणु आसबे निश्चय प्रभु आसबे कारण भक्त मैंने केवल छाड़िकारे ना भक्त मान गहन से जीवे भक्त जोटी भगवान जगन्नाथ सही बड़ ठाकुर बलभद्र सही देवी सुभद्रांगर दर्पदल रथ सही सब आज एकाकार रथ पथ भक्त समस्ते आज यही महामिलन मंच संसार रूपक बड़दाण्ड आज उभाई आज ठिया केते दिनर मनर कथा प्रभु को कहिबे हृदय कोली कहिबे हे बड़ ठाकुर बलभद्र तमे घर मुरबी तमे कली जुगर ठाकुर तमे आमर दुख बुज सब दुख दूर कर दि यही भावना नहीं
0: बार मास छतु एवं एक वर्ष अपेक्षा करिछि भक्त कौ दिन आसब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से तिथि को से तार निजर समस्त कार्य को से दूरे देछि एवं मु श्रीक्षेत्र जीवि श्रीक्षेत्र रही श्रीक्षेत्र यही कार्य सब करी मु क्षेत्र जीवि यही क्षेत्र को आसवापी तार जो व्याकुलता थिला से वर्तमान से पाई तार प्राणप्रिय ठाकुर को केते कथा मनरे भाभी दौची आउ श्रीमंदिर जो मेघनाद पाचेरी से कड़े कड़े अनेक श्रद्धालु भक्त माने ये दिव्य लीला को दर्शन

0: भजन कीर्तन माध्यम भगवान को पाइबार जो उपाय को चैतन्य महाप्रभु 1500 ख्रीष्टाब्दे 1509-10 जिते आसी समय यह करपरी भाव आज विभिन्न संप्रदाय मठ संप्रदाय तरफर संकीर्तन होदंड नृत्य होमें देखुचु श्रद्धालु भक्त मैने सिंहद्वार सम्मुखें एत सुंदर भाव श्रृंखलित भाव अपेक्षा करते निर्देश देवे आउ रथ टणा कार्य आरंभ हेबो आउ आरक्ष बाहिनी मने मध्य विभिन्न भाव सुसज्जित होती रथ को श्रृंखलित भाव कड़न भितर कौन सी लोक बाहर लोक बिना पास धारी लोक भितर को प्रवेश करने से माने मध्य दौना सुजोग से प्रभुंर यह लीलार एमती लीला चलो तेज वर्तमान नहीं जाऊँगी आम निकटे डॉक्टर शांतनु रथ महोदय निकट को जी प्रभुंर ये गाथा आउ कथा को अधिकारु अधिक आपण मान पाखे वर्णना करेंगे। जय जगन्नाथ।
1: धन्यवाद डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदया। आम रथजात्रार धारा बरणी एपर्यंत निरवच्छिन्न भाव सकाळ 7:30 रु आरंभ करि वर्तमान संध्या 6 समय उपगत हलाणी आम आपण को समस्त चेष्टा करि समस्त प्रकार भाव तथ्य समर्पण सहित आम आपण को महाप्रभुंकर ए पवित्र पावन रथजात्रार धारा बरणी शुणा चेष्टा करिछु एवं आपण अवगत अच्छा जे सकाळ 7:30 रु आरंभ करि किभळि भावरे घटना मान सब घटी चली महाप्रभु लीला रचना करि किभळि भावरे बलदाण्डरे आसी उपस्थित होती ये वर्ष को थरे ये गोटे यात्रा एवं ए यात्रार महत्व या होउछि जे ये केबे गोटे उड़ीसार यात्रा होकर कि पुरीर यात्रा होकर एबे आउ पुरी कि उड़ीसार यात्रा होकर ये नाही एबे भारतर विभिन्न स्थान रे बहु जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हलाणी भारत बाहर बहु जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हलाणी एवं सेति पाई मध्य विभिन्न जगार विभिन्न जलवायु को लेकर विभिन्न सुविधा को लेकर जो रथजात्रा होकर बिवाद सृष्टि हलाणी तेणु से बिवाद सृष्टि हो जहाँ भी हो वर्तमान जे जगन्नाथ आ पुरी क्षेत्र में सीमाबद्ध होके नहांते समग्र विश्व रे से परिव्याप्त होती महाप्रभु स्वयं परिव्याप्त होती तांकर सहित तांकर चेतना मध्य परिव्याप्त होई संस्कृति मध्य परिव्याप्त होई जगन्नाथ संस्कृति जो महनीयता ता जेमती गोटे संक्षिप्त परिसर रे थिला गोटे सीमाबद्ध परिसर भितर थिला ताहा एबे असीम परिवेश रे जाइकिरी उन्मुक्त हो जाइछि समग्र विश्व जनतांक पाखरे तेणु एटा ओडिया जातिर भाग्य एटा महाप्रभुंकर अपार करुणा एबे आमे कहू जे श्रीक्षेत्र रे महाप्रभुंकर जहाँ इच्छा ताहा ही विश्व इच्छा भाव रूपांतरित हुए तेणु विश्व रे आज महाप्रभु को लेकर जहाँ घटू ता महाप्रभुंर इच्छा बोली आम एक प्रकार ग्रहण करने को पड़ो तेणु गोटे आमर लाभ हूँ ये आज जगतर प्रत्येक स्थान लोक मैंने विश्वर प्रत्येक स्थान लोक मैंने जगन्नाथ को जानुंव जगन्नाथ संस्कृति को जानुंस जगन्नाथ संस्कृतिर महनीयता जानुं ये कम बड़ कथा नुहे आमर ओडिया जाति जो बंगवंशी राजा मैंने दक्षिण रु आसी एठी श्रीक्षेत्र रे मंदिर स्थापना कले महाप्रभुंकर सेवा पूजार विस्तार करेले एवं स्वयं आदिशंकर आसिकी एठी धाम प्रतिष्ठा कले सनातन धर्मर गोटे प्रसिद्ध क्षेत्र भाव रे ए श्रीक्षेत्र प्रतिष्ठा हला ए सबू कालक्रमे घटी हजार 1500 वर्ष भितरे ये जो विकसित होई जगन्नाथ संस्कृति एवं जो चेतना विकसित होई से चेतना वर्तमान विश्व चेतना आपण जानते श्रोता बंधु महाप्रभुंकर गोटे बड़ गुण होउछि बा जगन्नाथ संस्कृति गोटे बड़ महान संस्कृति होची जे समावेशी संस्कृति जहाँ को आम इंग्राजी में आजिकल इनक्लूसीविटी बोली कहूँ जे इनक्लूसीव कल्चर बोली कहूँ से महाप्रभु जगन्नाथंकर 1500-2000 वर्ष जिते बड़े जगन्नाथ संस्कृति उपासना हलाणी महाप्रभु को उपासना हलाणी से सर्व जन समावेशी गोटे संस्कृति ये विकसित होती जो समस्त को लेकर विश्व चलो समस्त को लेकर आम चल जो विचार जहाँ गोटे आधुनिक विचार बोली आम कहूँ से आधुनिक विचार आदौ नुहे से गोटे सनातन विचार एवं से सनातन विचार महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र में प्रदर्शित होती प्रमाणित होती प्रतिष्ठित होता कम बड़ कथा नुहे तेणु आज से घोषयात्रा अवसर में यही बार्ताटा समग्र जगत को जाऊँगी आकाशवाणी गोटे परम सौभाग्य जे 1948 मसीहा आरंभ कर 2026 मसीहा 79 वर्ष धरी सुदीर्घ 79 वर्ष ये गोटे आयु काल ठारू आहरी

आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु कार्यक्रम विकास मंत्र प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महाराणा उपस्थापना सुकांति महांती आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुत।

मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की।

0: संधि तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है।

0: एक रिपोर्ट।
1: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ

0: अमरनाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates.

लीजिए सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आडू बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं हूं आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओ, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: उपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देश दीप दास।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
3: जी, आपको बिल्कुल याद है। पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
2: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
3: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
2: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
3: जी।
2: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
3: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
2: बिल्कुल। फिर होता ये है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
3: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
2: बिल्कुल।
3: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
2: जी अजीत जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
3: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
2: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
3: जी।
2: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
3: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
2: जी
3: समुद्र के पानी के खारा होने का।
2: बताइए।
3: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
2: जी,
3: जो पानी में नमक मिलाते हैं। यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है
2: जी। ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा? वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा। लेकिन अब

0: तक तो ऐसा नहीं हुआ।
1: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी। यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं, जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है।
0: जी।
1: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
0: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है, और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
1: The Smart Monkey. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Recorded by Sangeet Kumar. Assistance in production, Jagabandhu Jana. Directed and produced by Ajit Horo. Dear listeners, If you want to give your feedback,

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी ठाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के

और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: यही तो मोर परम आराध्य पितृदेव ब्रह्मा त्रैलोक्यनाथ विष्णु सहित कौन से एक गुरुतर आलोचन बोध हुए निमग्न अंतराल रही आग शुणे आपूर्व लीला अवलोकन करार अभिलाष जगिलानी प्रभु नारायण नारायण नारायण
1: हे त्रैलोकनाथ विष्णु बराह अवतार धारण करी प्रलय पयोधि जलरु बसुमती को तुम उद्धार कर ओ मते पुणी चराचर सृष्टि करने को कहिल तुम निर्दोषे मु पुणी सृष्टि कल तुम माया तो समस्त को अगोचर विष्णु ए महाप्रलयर समस्त प्रसंग वर्णना करी मोर समस्त संशय दूर कर ओ सचराचर जीवकूल मुख्यर उपाय कण कह प्रभु
2: हे वेदपति ए संसार तुम्हें सृष्टिकर्ता पुणी तुम्हें त्रिकालदर्शी तुमको कौन अगोचर तथापि स्नेहर आतिशच्य मो तुंड जब शुणा को चाहू तेब कहूँ शुण

0: धैर्य धर इंद्रदुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाउछि मु श्रीहरिंक पासे पचारिबि तांकु एही कुटर कारण
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरि तळे शोकातुर अश्रु नयन
0: नारायण नारायण नारायण

वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे कहिले कौन कहिले पंदर

लज्जा नाही तम गजपति पुरुषोत्तम देव रथ उपरे चेरा पहरा करी जे चंडालर कार्य करे तार की हास्यास्पद प्रस्ताव कांची राजदेवा पद्मावती रो पानी ग्रहण से करीब पुरुषोत्तम आत्मघात कम नुह चंडाल ठाकुर जन चंडाल नरपति की दुस्साहस कथे मोर अंग प्रज्वलित हो जा ये प्रस्ताव मो वंश परंपरा प्रति घोर अपमान जा जा

हे जगन्नाथ मु तो रथ उपर चढ़ु थी सेवक माने मते राजा प्रताप रुद्रदेव का आदेश घोड़ाई मत प्रहार कले मो अपमान पाई रथ रु ओह से आसी आसी बांकी मुहां ठारे बाली रे रथ कर बसी तोर जदि मो प्रति स्नेह अच्छी तो सांगे सांगे से रथ रु मो रथ को चलिया नहले देखिबू जुग जुग पाई तो संगे मोर